अष्टपदी जाचक जान जाच प्रभदान कर कृपा देवह हर नाम जाचक जान जाच प्रभदान कर कृपा देवह हर नाम।

जय कर करते कीर्त होए सो कर राख विडाई तोए रहा वे सोए चसियाँ कड़ियाँ पहरा तेते वारी माह होआ सूरज एको रुथ नेक नानक करते के केते वेस राग तना श्री महला पहला गगन मै थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती तू पमल आण रो पवन चबरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तो ही कौ सहस मूर्त नना एक तो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चल तमोही सब मैं जोत जोत है सोए तिस दे चानन सब मैं चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत स्वभाव सुवारती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अनजन मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग का होए जाते तेरे नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बह भरिया मर साधु खंडल खंडा हे पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिब मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहा साकत हर रस साधना जानिया तन अंतर हो मैं कंडा हे ज्यो ज्यो चले चुभै दुख पाव है जमकाल सह सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बाव सोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मशगीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नाम ही सुख मंडा हे राग

हे गुरु जी, अम्मे दृष्ट शुभ करे अरे अग पाप सकल मल, काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल, सदा सुख मन वसे दुख संसारे खोवे, गुरु नवनिद दरियाओ जन्म हम कालक तोवे, सो को टल गुर सेविए अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाए, दर्शन

0: शंख चोर हराम को।
1: असंख अमर कर जाहे जोर शंख गलवड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे। असंख निंदक सिर कर है पार, नानक नीच कह विचार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो। अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग वखाण। जेता कीता तेता नाव, विणना वै नाही को थाओ। जो तुत पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लिया उह धोए। पापी आखण नाही, कर करना लिखला जा।

0: गत नत अपार गुण गण उदार
1: मुन गण प्रणाम निर्भय निकाल
0: अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड
1: से कर्म अद से तरह
0: सर्व बना गया अंडन बंड।

0: चतर्चक्र मानिए चतर्चक्र दानिए
1: न
0: कर्मम न ताये अजन्म न जाये
1: परे
0: पवित्रे अदृश्य अकृश्य
1: भगवती
0: कर्मे के आ पंज परमे
1: लोके
0: अवतूत भरने के प्रभूत करने
1: राज प्रभा है कि तरमंग तुझा
0: अशोक भरने के सर्वा परने।

0: अजीत्यो निवाज है गनी मुल्क राज है
1: स्वरूप त्रिमुक्त भूत है
0: प्रभुक्त प्रभा है संयुक्त सुधा है
1: स्वरूप अनुप है
0: समस्तो प्राज है सरा सब साज है
1: सलाम सदैव
0: निर्वास रूप है गाद है रूप है
1: अनाद रूप है अनाद स्वरूप
0: अनंदी अनाम त्रिभंगी त्रिका में
1: त्रिभर्गं त्रिभादे गंजे अगा
0: सुबल सर्पागे सुसर्प अनुरागे
1: त्रिभुक्त स्वरूप अचुज
0: के नरकम प्रनाश है त्रिशूल प्रवास है
1: त्रिभुक्त प्रभा है सदैव सदा है
0: त्रिभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनुप है
1: त्रिभुक्त सदा है अनुप्त
0: स्वरूप है।

0: अनाथे परमाथे अजोनि अमोनि
1: न रागे न रंगे न रूपे न रेखे
0: अकर्म अपर्म गंजे अलेखे
1: प्रिया छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे
0: अगंजुला नामे समस्तुल निवासे
1: रामं विभूते समस्तुल स्वरूपे
0: कुकर्म प्रणासी सुतर्म प्रभूते
1: सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी
0: करिमल कुनिंदा समस्तुल निवासी
1: जाय विभूते गजाय अवगनी
0: हरियम करियम करियम।

0: सुरंग सवारे
1: तुरंग कुरंग से कूदे पौन के गौन को जात निवारे
0: भारी भुजान के भूभली ब्यावत शेष न जात बिचारे
1: ते पे तो कहा पे भूपति अंत को नांगे ही पाए।

0: पुंज खपेंगे
1: ऊपर शान फिरे जब सतर सवे अब लोग जपेंगे
0: मानव इन गर इन राबर जोन तिलो को राज करेंगे
1: और स्नान गजाय कदान अनेक स्वयंबर साज भरेंगे
0: ब्रह्म सर्व सचिपत अंत फसे जम फास भरेंगे।

0: मुक्त ना होत है कोई पुछो विवेकियां जाए
1: अनेक योनी भरमावे बिन सतगुरु मुक्त ना पाए
0: मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु।

0: बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए
1: गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एक चों लिवलाए
0: कहे नानक आप करता आपे हुकम बुझाए
1: सिमर सा सर्व

मिल कर पावहुँ ते ल देहु सज्जन असीसड़िया जो होवै साहिब स्यों मेल सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहंदै साहो जिस पास बैठिया सोहिय सब नांदा वेसाहो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

जीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जौन न आवै। वेद पुराण सिमरत बूझै मूल सुख मह जानै अस्थूल। चौ वरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा दीस।

बृहस्पति जिसके अंतरराज अभिमान सो नर्कपाती होवत सुवान जो जाने मैं जोवनवंत सो होवत विष्टाका जंत आपस को कर्मबंध कहावे जन मरे भजोन प्रमावे तन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे नानकी हाँ मुक्ति आज्ञा सुख पावे धनवंता होए कर गर्भावे तृण समान कट संग न जावे बौल स्कुरमान के ऊपर करे आस पल पीतरता का होए बिना सब ते आप जाने बलवंत खिन मैं हो जाए पसमंत किसै न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे कुवारी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर फिरे अवतार अनक जतन करे आत्म नहीं द्रवे हर दरगे को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निक न आवे सर्व की रेन जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख नाही कोए जावे जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे कुबेरी मीत तब लग ने चलना ही चीत जब लग मोह मगन संगमाए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुरु प्रसाद नानक हों छूटै सहस कटे लख उड़तावे तृप्त न आवे माया पछे पावे अनक भोग बिखिया के करे न तृप्तावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजे सुपन मनोरथ ब्रथे सबका जय नाम रंग सर्व सुख होए बुढ़पागी किसे प्राप्त होए कर्ण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप कर्ण करावन करण हर इसका हाथ काम विचार जैसी दिश करे तैसा होए आपे आपे आप प्रभ सोए जो किच किनो सो अपने रंग सब ते दूर सब हूं के संग बुझे देखे करे विवेक आपे एक आपे अनेक मरे न बिन सया बिन जाए नानक सदी रे असमाए आप उपदेश समझे आपे आपे रचया सब कैसा थे आप कीनो अपन विस्तार सब कछ उसका करण हार उसते भिन्न कहो किछ होए तंत नंतरे कैसोए अपने चलते आप करण हार कौतक करे रंग अपार मन में आप मने अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्या नी सच सच सच सब कीना कोट मदे किने बिरले छीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत।